0: जित हरिया सब कोए, सोत क्यों का रखिया सोत को पवै रसोए, नानक सूत के बना उतरे, ज्ञान उतारे तुए महला पहला।
1: मन का सूत को लोभ है जेवा सूत कूड़, अखी सूत को वेखना परत्रिय परतन रूप, कन्नी सूत कन पहला तबारी खाए, नान खन साधमी बदे जमपुर।

0: के पायो फिका मुर्खा किए पाना ले सजाए महला पहला।
1: अंदर झूठे पैज बार दुनिया अंदर फैल हर सरती से जे ना वे उतरे ना ही मैल जिन पट अंदर बार गुदड़ ते पले संसार तेन्यों लगा रब सेती

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चेहन अर वरुण जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहे जाय कोट इंद्र इंद्राण साह साहान गणिज त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कह सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत एक मन पुरख त्याई वरदाता संत सहार सदा बखियाता ता चरण ले हृदय वसावा तौ परम गुरु नानक गुण गावा हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मन जन को पूर्ण दीजै हों बल बल जाओ रमैया कारणे कारण कबन अबोल बहुत जन्म विछड़े थे माधव इह जन्म तुम्हारे लेखे कह रवदास आस लग जीवा चिर भयो दर्शन देखे मैं नाही कश हो नहीं किस आहे न मोरा अवसर लज्जा राख लेहो सदना जान तोरा सुकहो टाल गुर सेविया अहनस सहज दर्शन।

गए मसकत काल नानक ते मुख उजले कीर्ति छुटे ना जिन नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले कीर्ति छुटे ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: पौड़े वडे वडा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सब के तेरे वास तेरा घर पला तेरा घर आनंद वधाई तुद घर है माण माता तेज अपना आप जारे सर्व कला भरपूर देस जग करता नानक दासन दास तुद आ गए बिनवता
1: राम कली महला तीजा आनंद एक

गए मशक्कत काले नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की Thank you.

लौट गुरु आसरियों के आसरा गुरु। तन तन साहेब श्री गुरु रामदास साहेब जीओ महाराज। तन तन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ।

गए मसकत घाट नानक ते मुख उजले किति छुटी नाल जने नाम ते आया गए मसकत घाट नानक ते मुख उजले किति छुटी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

आया गई मशक्त काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिला ता जीवा तन मन थीवा हरिया तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थीवै ਸਾਹਿਬ।

सोरठ महला पंजवा विच करता पुरख खलोआ मज्जन गुर आंदा रासे जप हर हर किल विख नासे विच करता पुरख खलोआ मज्जन गुर आंदा रासे जप हर हर किल विख नासे संत हो रामदास सरोवर नीका जो नावै सो कुल तरावै उदार हुआ है जी का रहा जय जयकार जग गावै मन चिंदड़े फल पावे सही सलामत नाई आई अपना प्रभु त्याए संत सरोवर नावै सो जन परम गत पावै मरे न आवै जाई हर हर नाम त्याई यह ब्रह्म विचार सो जानै जिस दयाल होए भगवान बाबा नानक प्रभ शरणाई सब चिंता गणत मिटाई यह ब्रह्म विचार सो जानै जिस दयाल होए भगवान बाबा नानक प्रभ शरणाई सब चिंता

0: पौड़ी बड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सबक तेरे वास तेरा घर भला तेरा घर आनंद वधाए तुत घर माण महता तेज अपना आप जार सर्व कला भरपूर देस जत कता नानक दासन दास तुद आ गए बिनवता
1: श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दुई दाई दाया खेले सगले जगत चंगियाँ या

गए मुसकत काल नानक ते मकूजले केते छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुरसंगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुर रामदास रखहु सरनाई। एक अरदास

कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूरे अरसहु कुरसहु चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहदय साहु, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहु, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहदय साहु, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाहु। सत नामा

रहाओ। जैसा बालक पाए सुपाई, लख अपराध कमावा, कर उपदेश छिड़के बहु पंति, बहुण पिता गाल लावा, पिछले अवगुण वखस लए प्राव, आगै मार्ग पावा, हर अंतर जामी सब विद जाने, ता किस पह आख सुनाईया, कहना कथन ना पीजा गोब।

मांग मोकौ कर संतन की तूरे अंतर जामे पुरख विदाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांग मोकौ कर संतन की तूरे।

अपने आप साजियो अपने रचियो नाओ दोई कुदरत साजिए करा सुन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस दे वै करे पसाओ तू जानो ही सबसे देह लैसे जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन।

मुसलमाना शिव सरियत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जपे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला हण दसन रूप पार तीर्थ नावे अर्चा को जागर बस बेकार जोगी सुन त्यावन जेते लख नाम करतार सुख मूर्त नाम जंजन काया काया कार सतिया मन सुन तो उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा यारा ते कुड़ियारा खारा बाबे कार एक होंदा कह चले था हो तिना बिकाई कार जल था दिया पुरिया लोहा आकार आया कार ओ जा कर सतू है जाने तिना भी तेरी सार नान पक्ता।

0: लेखक लीलाट लिखसे।
1: श्लोक महला पहला, पड़ पड़ गड्डी लदिए पड़ पड़ भरिए साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाइए पड़ पड़ गड्डिए खा।

अलमल खाई सिर शाही पाई मूर्खन दे पत गुवाई विनावे की थाए ना पाही रहे बबाड़ी मरी मसानी अंत ना जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का।

0: संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण पगा ए आई है प्रतीत प्रतीत है आई जिन जान के तिनको पदवी उच्च पई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अब लोक्या ब्रह्म परम सब छुटकिया दिव्य दृष्ट कारण करन सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरन निर्मल नाम सुधा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिनयागर गहर गंभीर अथा अतबड सो पर सदा सब विदलत नागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर कल युग दुर्त दूर कर बे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर कल युग दुर्त दूर कर बे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर
1: परताप सदा गुर का कट कट परगास प्या जस जन कै इक पड़े सुने गावे प्रभात करे इशनान इशनान करे प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन हुए परस पारस को ज्योत स्वरूपी त्यांतरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रेहा पूर्वो विद वर्णं सतगुर गुर से अलख गत जाकी श्री रामदास तार

तेज पुंज त्यों लोक प्रगासै, देखत दस पटक ब्रह्म भजत, दुख पर हर सुख सहज बिगासै, सेवक सिख सदा तुलुभत, आलस मूजों कुसुम सुभासै, वेद्यमान गुर आप थप्यो थिर, साचो तखत गुरु रामदास। तारियो संसार माया मद मोहित, अमृत नाम दियो समरथ, फुन कीरत वंत सदा सुख संपत, रिद्धर सिद्ध न छोटे साथ, दान बड़ा।

0: जाकमुन ध्यान तारे फेरत सकल जोग कबहु को पावे आत्म पर गास को वेद बाणी सहित बेरंच जस गावे जाको सेव मुन गह ना तो जात का बलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूठ पेख किए फेरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बधाई दई गुर रामदास को मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जूतन बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जूखण कर्म कर तो दर्स परस पारस सर बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तय हर परम पद पायो
1: जे सतगुर सिमरंत नायन के तिमर मिटाखिन जे सतगुर सिमरंत।

जेह सतगुर सिमरंथ रिद सिद्ध नवनिध पावै, सोई रामदास गुर बालपन मिल संगत तन तन करो। जेह सतगुर लग प्रभ पाईऐ, सो सतगुर सिमरो नरहो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत ना छोड़ो पास। ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो, दुख दरिद्र अंधियार को नास। कव कीरत जो संत चरण मुड़ लागे, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। जिवे अंगद अंग संग नानक गुर, तिव गुर।

एक जी कछ कही ना जाई, सोडी श्रेष्ठ सकल तारन को अब गोर राम दास को मिली बड़ाई। मोह मल बेवस कियो, काम गह केस पछाड़ियो, क्रोध खंड पर चंड लोभ अपमान स्यों चाड़ियो, जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सुमन, भव सागर बंदियो सिख तारे सो प्रसन्न, सिर आ

0: दास सच सल पण तू अटल राज अपग दल।
1: गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन दे जा की सेव शिव सिद्ध साधिक सुरे सुर गन तरे ते तिस गुर बचन सुन कन दे पुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर तरयो प्रहलाद गुर मिलत।

पै पुले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की

0: जुग जुग फेर बटाई ज्ञानी पूजेता है। साधु रस दो का तर्म गिरथवा हो, त्रे तेरा जते का जोर गिरथवा हो, द्वापुर रा तपे का सत गिरथवा हो, काल जुग रा थगन का कूड़ गैर थवा हो।
1: अल्लाह पहला साम कहे स्तंभ स्वामी सच।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो। सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है। जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे है। कर नौ निधि आवै ताई। सब थाई हुई सहाय। दसवीं पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुई सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान तरके। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजां प्यारियां। चौहां साहिब जादियां। चालियां मुकतियां। हठियां जपियां तपियां। जिना नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही। देख के अण डिठ कीता। तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघनिया ने धर्म हेत सीस दिते। बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइया। चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए। गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया। धर्म नाही हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निवाही। तिना दी कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी।

आवे। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आरियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पान।